0: ताज़ दूर रहा देतू वो, ये घसघाल सेगा चिम्बी, सिमचे श्लांचु।
1: सिमचे माची, अनंग दामी।
0: चांगो शे नेजू दी शामा शे या दी, ताक्षो चिंचू चिर सबचु, मासे।
1: ती कोल शामो की, लेंचिंग चिंदम दा रानल, क्या दूर चिर सब, ये शामो ल, किस दूरी निजे निजे शे पी।
0: शाम साम शे चिदो पी चियू, सालम उंगु दे जे दाग माशी।
1: 一年年差不多，小莫里几嘛些账，点点，是不给不穷有几嘛些？
0: 俺做我身边小莫的，老几穷就得这样嘛些。俺一年只些些，点么子吃不些？年不就是要的美军做些，直接切皮。他弄够嘛些的？
1: 嗯。
0: 都是到对上街上些东西啊。俺他的牙用队长了，出去点呗，他们就要我去我上去，都是这。
1: 夏雨，俺他的给么小事嘛谁？